0: KZSU Stanford.
1: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, यह है KZSU Stanford 90.1 FM. मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम. स्वागत है आपका. दोस्तों, आप किसी भी देश के हों, किसी भी देश में रहते हों, लेकिन आजादी का जज्बा हर किसी के लिए एक जैसा होता है. चलिए मिलकर मनाते हैं आजादी आज, इंसान की, उसके विचारों की, देश की.

0: KZSU, Zootopia is our robot-curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past two decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
1: दोस्तों, अगर शायरी आपके दिल को जाती है, प्यार के, मोहब्बत के नगमे आपके रूह तक पहुंचते हैं, तो फिर आपके पास एक संजीदा सा दिल है. वो दिल जो अपने माता पिता से मोहब्बत करता है, महबूब या माशुका के लिए धड़कता है, बच्चों से प्यार करता है और अपने देश के लिए भी वही जुनून, वही प्यार जगाता है. मुझे 15 अगस्त कहते ही याद आती है बचपन की वो सुबह जब मैं इस्त्री किए हुए कड़क यूनिफॉर्म में, दो चोटियां बांधे, पॉलिश किए हुए जूते पहने अपने स्कूल में देशभक्ति के नारे लगाती थी, भाषण देती थी. साल दर साल पहली से लेके 12वीं तक ये सिलसिला जारी रहा, पर हर बार वही प्यार, वही जुनून, वही उत्साह. और यकीन मानिए दोस्तों, तब भी और अब भी वो याद करके आंखें छलक आती हैं. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए याद करते हैं उन्हें जिन्होंने कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई.

दोस्तों, एक वो पल था जब लता जी गा रही थी और नेहरू जी की आंखें छलक पड़ी थीं। उस महान पल के साथ तो मैं तुलना नहीं कर सकती दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए स्टैनफोर्ड के कैंपस से ये गाना ब्रॉडकास्ट करते हुए मुझे उतनी ही खुशी हो रही है और मेरी आंखें उतनी ही नम हैं। बचपन में माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता पढ़ी थी मैंने, आपने भी पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा। तो आज ऐसी ही कुछ कविताएं जो बचपन में पढ़ी थी और हमें याद है, उन्हें आज हम दोहराएंगे साथ साथ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शो पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।

आज़ादी का आंदोलन न केवल देश की आज़ादी के लिए संघर्ष की याद दिलाता है, पर स्वदेशी का महत्व, खादी का प्रयोग, गांधी जी का सत्याग्रह, रघुपति राघव की गूंज आपको अभिभूत कर देती है। आपको भी याद होगी बाल भारती की वो एक कविता, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा, छूत अछूत नहीं मानूंगा, सबको अपना ही जानूंगा, एक मुझे तू लकड़ी दे दे टेक उसे बढ़ जाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे तकली खूब चलाऊंगा, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा, रघुपति राघव गाऊंगा। तो रघुपति राघव एक नए अंदाज में।

टूट रहा है अब विश्वास, 5 वर्ष धुंधला आकाश, कौन द्वार हम खटकाएं, कौन से वादे दोहराएं।

दोस्तों, जब मन डूबने लगे, निराशा घेरने लगे, तो आशा का साथ मत छोड़िए, बस दीप जलाते चलिए। मुझे याद आ रही है अटल बिहारी जी की एक कविता, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।

आज याद आ रहे हैं वो शहीद और साथ ही याद आ रही है रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगुणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल।

This is KZSU Stanford 90.1 FM. I am Pranjali and you are listening to Chai Time. और चाय टाइम पर दोस्तों हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी का. आज़ादी की बात निकले तो मैं याद करती हूँ वीर सावरकर को और उनकी इन पंक्तियों को. ने मजसी ने परत मातृ भूमिला सागरा प्राण तड़मड़ला. ये मराठी में है और इसके भाव ये हैं कि नभ में बहुत सारे नक्षत्र हैं तारे हैं लेकिन सबसे प्यारा भारत भूमि का तारा है. बड़े बड़े महल हों लेकिन माँ की झोपड़ी ही प्यारी लगती है. देश से जन्मभूमि से दूर रहकर मन व्याकुल हो उठता है. सागरा प्राण तड़मड़ला.

सलाम है सावरकर को, सलाम है राम प्रसाद बिस्मिल को, सलाम है उन्हें जो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है, जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनू, क्या वो तूफान से लड़े जो कश्ती साहिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

दोस्तों, जब हम सावरकर का गीत सुन रहे थे, सागरा प्राण तरमाला, तो जो भाव मेरे दिल में उठ रहे थे वही आप पाएंगे अगले गाने में।

तो दोस्तों, यदि आज के गाने आप फिर से सुनना चाहें या कोई भी पुराने शो की रिकॉर्डिंग सुनना चाहें तो आप सारी रिकॉर्डिंग्स पा सकते हैं soundcloud.com/chaitimeradio पर. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर और लिख सकते हैं मेरे फेसबुक पर या facebook.com/chaitimeradio पर. तो लाइक करना ना भूलें, लिखना ना भूलें और हमेशा चाय टाइम से जुड़े रहें. घड़ी का इशारा हो गया है दोस्तों, और मैं इसी दुआ के साथ यहाँ विराम लेती हूँ कि हम आने वाली पीढ़ियों को समझा सकें कि कितनी बेशकीमती है यह आज़ादी. उम्मीद करती हूँ कि देशभक्ति एक फैशन बन जाए और आज का युवा इस भावना को समझे और आगे लेकर जाए. मैं अकेला हूँ इस करोड़ों की आबादी वाले देश में, मैं अकेला कर ही क्या सकता हूँ ये ना सोचे. एक ही काफ़ी है क्रांति जगाने, बदलाव लाने, उन्नति की ओर बढ़ाने. रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी पंक्तियां एकला चलोरे के साथ हम खत्म करते हैं आज की चाय.